नमस्कार। 29 जून के मह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, अभिनंदन है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। भरपूर मनोरंजन लेकर आया हूं एक बार फिर सुखदेव जसवाल। एक फौजी जिसका नाम मदन मोहन फौज की नौकरी छोड़कर चला आया बॉम्बे और बॉम्बे में बना म्यूजिक डायरेक्टर, नाम मदन मोहन। लता जी ने उन्हें अपना फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर बताया और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी सबका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर बनने में। मदन मोहन जी ने वो कौन थी, मेरा साया, मनमौजी, हीर रांझा, अनपढ़, हकीकत जैसी कई फिल्मों का मधुर संगीत दिया। महक आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम जरूर सुनिए और अगर पसंद आए अपने दोस्तों को जरूर बताइए। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मुफ्त। www.rrr.org.au पर लिसन ऑनलाइन प्ले बटन और अपने मोबाइल पर भी इसी तरह से, या फिर एक मुफ्त फ्री ऐप डाउनलोड कीजिए और उस फ्री ऐप से आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल पे, आप जहां भी हों, अपना मनपसंद कार्यक्रम महक। और ये फ्री ऐप है कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए अपने फेवरेट ऐप स्टोर से। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आपकी फरमाइश पेश करते हैं इस 2 घंटे के छोटे से कार्यक्रम में। और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02981622777 02981622777 और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की। नंबर एक बार फिर 9816277 9816277। और जैसा मैंने बताया ऑनलाइन सुनने के लिए बहुत ही आसान है www.rrr.org.au पे लिसन ऑनलाइन प्ले बटन। और मदन मोहन जी का जन्म हुआ 25 जून 1924 को इराक के शहर बगदाद में, जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली इराक पुलिस में अकाउंटेंट जनरल के पद पर काम कर रहे थे। 1932 में परिवार पंजाब में झेलम नदी के चकवाल वापस आ गया। कुछ साल लाहौर में पढ़ाई की उन्होंने, वहीं उन्होंने करतार सिंह नाम के व्यक्ति से संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। फिर परिवार बॉम्बे आ गया, वहाँ सेंट मैरीज स्कूल बाइकुलम से सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की। 11 वर्ष की आयु से ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के कार्यक्रम में भाग लेने लगे। 1943 में सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हो गए, फौजी बन गए। वर्ल्ड वॉर सेकंड उस समय जो चली उसके अंत तक 2 साल तक सेना में रहे और फिर वापस बॉम्बे आकर संगीत में दिलचस्पी लेने लगे। 1946 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया। मुलाकात हुई उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर
और तलत महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों से। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में पहली गज़ल रिकॉर्ड की उन्होंने अपनी आवाज़ में, आने लगा है कोई नज़र जलवा कर मुझे, आने लगा है कोई नज़र जलवा कर मुझे, और दूसरी गज़ल थी इस राज को दुनिया जानती है। 1948 में पंजाबी फिल्म शहीद के लिए लता जी के साथ उन्होंने दो गाने रिकॉर्ड किए, पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा सा दिल डोले। संगीत था गुलाम हैदर साहब का, जो उस समय के मशहूर क्या दिग्गज संगीतकारों में से, म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे गुलाम हैदर। 1946 से 1948 के बीच एसटी बर्मन साहब और श्याम सुंदर जी, जो एक और म्यूजिक डायरेक्टर थे उस समय के, उनके असिस्टेंट रहे। 1950 में फिल्म आंखें के लिए संगीत दिया, पहली बार किसी फिल्म का संगीत दिया। फिर फिल्में आईं अदा, देवानंद साहब की फिल्म आई शराबी, और फिल्म शराबी के लिए उन्होंने रफ़ी साहब से दो गाने गवाए, सावन के महीने में एक बार सीने में, और कभी न कभी कोई न कोई तो आएगा। और आज भी ये दोनों गीत रफ़ी साहब के बेहतरीन गीतों में से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि क्लासिकल सिंगिंग के बारे में क्या कहें, वो थी, और क्लासिकल म्यूज़िक का अंदाज था, लेकिन रफ़ी साहब की बेमिसाल आवाज़ ने इन दोनों गानों को जिंदा कर दिया।

रफी साहब से उन्होंने इतनी दर्दनाक दर्द से भरी हुई कहना चाहिए, दर्दनाक नहीं, दर्द से भरी हुई ये गजल गवाई और फिर एक फिल्म आई जिसमें उन्होंने तलत जी की आवाज़ को लिया और तलत जी की आवाज़ आप जानते हैं कितने दर्द से भरी है। फिल्म थी देख कबीरा रोया और तलत जी की आवाज़ का पूरा जादू उनके संगीत में उभर कर आया क्योंकि नाम था मदन मोहन।

सिन्हा जी थी इस फिल्म में और तलत जी की आवाज का जादू एक बार फिर मदन मोहन जी के संगीत में सुनने का मौका मिला।

0: आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। 2:19 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा मदन मोहन जी के संगीत में ढाले हुए गाने लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर। और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02981622777 02981622777।
1: Refinance with a bank you can feel better about. It's the Better Big Bank, Bendigo Bank, right here at Cox's Road Mall, North Ryde. See for yourself when you switch your home loan to Bendigo Bank and join the bank with the most satisfied home loan customers. With 1.9 million Aussies already benefiting from competitive rates and trusted services.
2: You'll find 2RRR sponsor Bendigo Community Bank North Ryde right here at the Cox's Road Mall, North Ryde. Bendigo Bank, the better big bank.

0: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef's specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music three nights a week.
1: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
2: Transport for New South Wales is upgrading the infrastructure at Mortlake and Putney Ferry Wharves. The ferry service will be fully closed until September 2025. Drivers can detour via Ryde Bridge during the closure. Pedestrians and cyclists can catch the F3 ferry service between Kissing Point and Cabarita, or check Trip Planner for alternative travel options. For questions, including ferry closure dates, or to receive project updates, contact Transport Projects on 1800 684 490 or Google search for Mortlake Ferry Upgrade Project.
3: संदेशों के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर आज मदन मोहन जी के संगीत में ढाले हुए गानों के इस कार्यक्रम में जो चलेगा 4 बजे तक और अपनी फरमाइश सुनने के लिए बहुत ही आसान है हमारा नंबर है यहां स्टूडियो में 0298162777 0298162777 और ये फरमाइश है माही की माही ने पसंद किया है लता जी की आवाज में फिल्म अनपढ़ का ये बेहतरीन गाना जिसमें धर्मेंद्र जी थे माला सिन्हा जी थी और लता जी ने अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी के लिए ये गाना गाया था

24 जून के जनसत्ता समाचार पत्र में ये समाचार आया कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में भीड़ को बता रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप का न्योता छोड़कर उड़ीसा के लोगों के महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति प्यार से खींचे चले आए उड़ीसा। इस सप्ताह उड़ीसा के लोगों का एक अलग चेहरा देखने को मिला। आदिवासी बुलू, उसका नाम है बुलू, अपनी बेटी की शादी के लिए गाय खरीदने के लिए अपने चचेरे भाई बबुला के साथ दूसरे गांव गया। कुछ कथित गौ रक्षकों ने उन्हें गौ तस्कर बताकर उनकी अच्छी पिटाई की, घुटनों के भर चलाया, घास खिलाई। जी हाँ, ठीक सुना आपने, घास खिलाई, गंदे नाले का पानी पिलाया, नाई से आधा सिर मुंडवाया और गांव तक 2 किलोमीटर पैदल चलवाया, उनके पैसे तक छीन लिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर कहा, यह घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। आपको मालूम ही होगा कि अगले जनरल इलेक्शंस में जाति पर जनगणना करने की मांगे हैं। दलितों और पिछड़े जाति वालों को रौंदने वाली हर घटना बाबा साहेब के संविधान पर हमला है। बराबरी, न्याय और मानवता के खिलाफ साजिश है। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। ये भी कहा कि ऐसी घटनाएं बीजेपी शासित प्रदेशों में आम होती जा रही हैं क्योंकि उनकी राजनीति यानी बीजेपी की राजनीति नफरत और ऊंच नीच पर टिकी है। जो भी हो, हमारी जो फरमाइश पेश करने की नीति है वो सबके लिए बिल्कुल बराबर है। आप जो भी गाना कहेंगे उसे हम ज़रूर पेश करेंगे। लता जी ने मदन मोहन जी को अपना पसंदीदा म्यूज़िक डायरेक्टर बताया। बताएं भी क्यों ना, लता जी के बेहतरीन गानों में से मदन मोहन जी के संगीत में ढाले हुए गाने शामिल हैं। और ऐसा ही एक गाना है और लता जी की आवाज़ इस गाने में, इस गाने की जो फिल्म है वो थी हीर रांझा। और गाने के बोल हैं, मिलो न तुम तो हम घबराएं। और इस गाने को सुनते हुए हमारा नंबर एक बार फिर 02981622777।

0: बहुत ही प्यारा गाना. और अब समय है बात करने का कि सिडनी में क्या हो रहा है. और सिडनी में हो रहा है सफल, और सफल के सफल ऑर्गेनाइजर हैं केदार जी. और केदार जी हैं लाइन पर मेरे साथ. केदार जी, महक में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: शुक्रिया.
0: और बताइए, अगले शनिवार क्या कार्यक्रम होने वाला है सफल में?
1: हाँ जी, अगले 5 जुलाई को हो रहा है हमारा पार्ट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ आर सफल फेस्ट. हमारा परफॉर्मेंस कंपटीशन हो रहा है एट द नॉर्थ राइट स्कूल ऑफ आर्ट्स, कॉक्सेस रोड. इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं. तो तीन कैटेगरीज है हमारा यहाँ पे. एक तो सोलो सिंगिंग,
0: करेक्ट,
1: 12 इयर्स टू 17 इयर्स,
0: वेरी गुड,
1: एंड देन 18 इयर्स एंड अबव,
0: एक्सीलेंट,
1: और सोलो डांसिंग 12 इयर्स टू 17 इयर्स कैटेगरी है, देन 18 इयर्स एंड अबव. इस बार हमने ग्रुप डांसिंग मैक्सिमम 5 पर ग्रुप. We have introduced that as a new group dancing item.
0: Very good.
1: Instrumental, again, it's an open category. So, the difference of Safal is we are having 8 countries, you know, South Asian countries. Anyone from these 8 countries can participate.
0: Very good.
1: Or so that is why we are trying to give up. Hum ek platform dena chahte hain.
0: Yeah.
1: Sabhi logon ko. Young and anyone who's got interest and passion in music, dance and instrumental.
0: Right. तो ये जो गाने हैं ये किस लैंग्वेज में होंगे?
1: हाँ जी, ये कोई भी लैंग्वेज में. आप अगर श्रीलंकन में, आप श्रीलंकन में गा सकते हो. अगर आपको बंगाली, बांग्लादेश में, इंडिया, तमिल, तेलुगु, एनी लैंग्वेज, एनी ऑफ द एशियन लैंग्वेजेस.
0: बहुत अच्छी बात है, अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलेंगी.
1: हाँ जी, हाँ जी. और जजेस भी अलग अलग कंट्रीज के हैं, तो एकदम एक फेयर जजमेंट होना चाहिए. तो वी हैव डिफरेंट जजेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये शुरू हो रहा है द सिंगिंग सेगमेंट इज स्टार्टिंग एट 9:30 फॉर 10 o'clock स्टार्ट, अप 12:30, और डांस सेगमेंट है 1 o'clock टू 3:30. उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल सेगमेंट अप टू 5 o'clock.
0: वेरी गुड.
1: एंट्री फॉर एवरी पब्लिक इज फ्री.
0: या
1: एंट्री फॉर पब्लिक इज फ्री. एवरीवन इज वेलकम. आपके लिसनर्स, आपके प्लीज, यू नो, आई वुड कॉल अपॉन एवरीवन टू कम एंड सपोर्ट दिस फैंटास्टिक इवेंट.
0: श्योर, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड टेक पार्ट.
1: And needless to say, Sukhdevji, you are invited, please.
0: Oh, definitely. I will try my best. Anjay. Thank you for coming on the program and giving all this information about the next week, Safal.
1: Shukriya ji and dhanyavaad.
0: Thank you. Bye.
1: Bye-bye.
0: To ye the केदार जो ऑर्गेनाइज करते हैं सिडनी में सफल कार्यक्रम, जिसकी एक किश्त अगले शनिवार को है, और उसके बाद फिर अगस्त में और फिर सितंबर में. और हमारी अगली किश्त है फरमाइशी गाने की, वो है सुमन की पसंद पर. और सुमन ने पसंद किया है प्रदीप कुमार नरगिस जी की एक बहुत ही सफल फिल्म अदालत का गाना, जिसका संगीत दिया मदन मोहन जी ने और गाया है लता जी ने, उनकी भी फेवरेट गायिका और लता जी के भी फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी.

0: बात है।
1: दिल्ली सरकार ने एक नया कानून पास किया है। इस कानून के अधीन दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर अब 10 वर्ष से पुरानी डीजल व्हीकल्स और 15 वर्ष से पुरानी पेट्रोल या सीएनजी व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और गैस नहीं मिलेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एनफोर्समेंट टीम्स भी तैनात की हैं। लोग खड़े कर दिए हैं वहाँ जो चेक करेंगे कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है और आप कौन सी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं पूछते कि आपकी फरमाइश क्या है और क्यों है। जो आपकी फरमाइश होती है उसे हम केवल पेश करते हैं, जैसे कि सुधा ने पसंद किया है ये बेहतरीन गाना। और ये रोमांटिक गानों में से है जिनका संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। और मदन मोहन जी संगीत देने में तो माहिर थे ही, लेकिन रोमांटिक संगीत देने में बहुत ही माहिर थे।

महिला क्रिकेट में भारत वर्सेस इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में T20 मैच में भारत की स्मृति मंधाना ने एक पर्सनल माइलस्टोन कायम कर लिया है। T20 में 62 बॉल्स पर 112 रन बनाकर वो T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने वाली दूसरी महिला बनी और 2018 में हरमनप्रीत कौर T20 में 103 रन बनाकर पहली भारतीय महिला बनी थी T20 में शतक बनाने वाली। भारत ने इस मैच में 5 विकेट पर 210 रन बनाए और 97 रनों से भारत जीता। और स्मृति मंधाना अब तीनों फॉर्मेट्स में जानती हैं, तीनों फॉर्मेट टेस्ट मैच है, वनडे है और T20 है, तीनों में शतक बना लिए हैं और यहाँ शतक बन गए हैं आपकी फरमाइश से। और ये फरमाइशी गाना है, फिल्म है, बहुत ही प्यारा है ये, और ये गीता दत्त जी की आवाज़ में है। फिल्म है भाई भाई, या माफ़ कीजिए, जी हाँ, फिल्म है भाई भाई और गीता दत्त जी ने अपनी मधुर आवाज़ दी है और अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों थे इस फिल्म में।

0: 3:03 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में. अब समय है संदेशों का. संदेशों के बाद मदन मोहन जी के संगीत में ढाले हुए गानों का कार्यक्रम जारी रहेगा.
1: The home of the $5 taco.
2: Where?
1: At Calyrae Restaurant, Newtown, on Tuesdays, Thursdays and Sundays. And you can wash them down with $12 cocktails between 5:30 and 7:30 p.m.
2: So what about Wednesdays?
1: Or half-price barbecue cauliflower wings.
2: And Thursdays?
1: In addition to the $5 tacos and $12 cocktails, there's half-price nachos. And not forgetting the fabulous $8 beers every day.
2: Cali Ray, with its Mexican plant-based plates, offered up in a funky venue. It's so delicious and Instagrammable.
1: Station sponsor Cali Ray Restaurant, 62 King Street at the city end of Newtown.
3: Concussion affects thousands of Australians every year. To discover why some recover well and others don't, the Australian Mild Traumatic Brain Injury Study, AUS-MTBI, is recruiting adults and children with recent concussion. The benefits of contributing to the study include a personalised recovery program and symptom tracker. Download the HeadCheck app, join AUS-MTBI and complete the study for a chance to win a Visa gift card.
4: Station sponsor.
5: The Hunters Hill Council has installed its first electric vehicle fast charging station at the council car park in Gladesville. This new infrastructure consists of two charging bays and provides a convenient and efficient charging station for the growing number of electric vehicle owners in the community. If you aren't able to access home charging for your electric vehicle, then visit the council car park at 3A Cowell Street, Gladesville. That's C-O-W-E-L-L Street, Gladesville.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं है 88.5 FM पर आज मदन मोहन जी के संगीत में ढाले हुए गानों के इस कार्यक्रम में. बंकिम चंद्र चटर्जी, 26 जून 1838 को उनका जन्म हुआ. पिता थे सरकारी नौकरी में और आगे चलकर मिदनापुर के डिप्टी कलेक्टर बने उनके पिता. कलकत्ता में उन्होंने पढ़ाई की और 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से पहले दो ग्रेजुएट्स में से एक वो थे. 1869 में 1869 में लॉ की डिग्री ली. लिखने का शौक पहले से ही था, लेकिन जैसे कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है और कुछ अपने जीवन गुजर के लिए कुछ तो करना पड़ता है. 1869 में लॉ की डिग्री करने के बाद जैसूर के डिप्टी कलेक्टर बन गए और 1891 में रिटायरमेंट ले ली. रिटायरमेंट के समय वो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे. उनकी कृतियों की बात करें, उनकी लिटरेचर की बात करें, तो 1865 में दुर्गेश नंदिनी छपी, 1866 में कपाल कुंडला जो एक ऐतिहासिक नॉवल है छपा, 1869 में मृणालिनी छपी, 1873 में 1873 में विषवृक्ष और इंदिरा छपे, 1875 में कमल कांतेर दफ्तर जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी छपा था, जिसका टाइटल था फ्रॉम द डेस्क ऑफ कमल कांते, जो एक कॉमेडी थी. 1882 में सबसे मशहूर कृति उनकी आनंद मठ छपी, जो एक कहानी है सन्यासी सेना की जो अंग्रेजों की सेना से लोहा लेती है. आनंद मठ ही स्रोत बनी गीत बंदे मातरम का. जन्मभूमि भारत के सम्मान में उनका ये गीत, जो अब भारत का राष्ट्र गीत है. 1884 में देवी चौधरानी छपी और फिर उन्होंने भगवद गीता पर कमेंट्री लिखनी शुरू की, जिसके केवल वो 4 अध्याय तक ही लिख सके. इसे उनके देहांत के बाद जैसे के तैसे रूप में 1902 में प्रकाशित किया गया. स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी आप जानते हैं, जो कि बहुत ही जाने माने एक धार्मिक गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस. उन्होंने उनके साथ उनकी अच्छी जान पहचान थी, तो उन्होंने मजाक में रामकृष्ण परमहंस जी ने मजाक में एक दिन पूछा कि किस कारण वो टेढ़े हो गए. आपको बता दूं कि उनका नाम बंकिम जो है उसका एक मतलब टेढ़ा भी है. तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा किस कारण वो टेढ़े हो गए. जवाब में बंकिम जी ने भी मजाकिया लहजा अपना कर कहा जब से अंग्रेज की लात पड़ी है, जब से अंग्रेज की लात पड़ी है. तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी था बंकिम चंद्र चटर्जी में, जिन्होंने बहुत ही सीरियस लिटरेचर लिखा है बंगाली में. और उनकी मृत्यु हुई 8 अप्रैल 1894 को. आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक. पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल. आज मदन मोहन जी के संगीत में ढाले हुए गाने आपके लिए पेश कर रहा हूं. और उन्होंने एक गाना जो था फिल्म नौनिहाल में उसका संगीत दिया था. और ये गाना था उस समय जिनकी मृत्यु हुई थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में. पेश है आपके लिए फिल्म नौनिहाल का ये बेहतरीन गाना रफ़ी साहब की बेहतरीन आवाज़ में, मदन मोहन जी के बेहतरीन संगीत निर्देशन में.

फिल्म सरदारजी थ्री, सरदारजी थ्री दिलजीत दोसांझ की ये नई फिल्म है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के फिल्म में होने से कुछ लोगों को नाराजगी है। फिल्म की भारत में रिलीज रोक दी गई है। दिलजीत दोसांझ जो इस फिल्म के हीरो हैं उन्हें गद्दार तक कहा गया है। ये सब पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एंटी पाक लहर के कारण हो रहा है। फिल्म के पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बहुत पहले ही ले लिया गया था इस ऑपरेशन सिंदूर से, और फिल्म की शूटिंग भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही फरवरी में ख़त्म हो गई थी। दिलजीत दोसांझ ने कहा था कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा, उनका पैसा डूबेगा। अब लेखक जावेद अख्तर भी इसके बारे में बोले हैं और कहा है कि बैन लगाने से पैसा हिंदुस्तानियों का डूबेगा, किसी पाकिस्तानी का नहीं। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी अपनी आवाज़ जोड़ी है इसके साथ। आपको याद होगा उन्होंने भी दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म बनाई थी चमकीला, और उन्होंने कहा है कि कास्टिंग के लिए एक्टर जिम्मेवार नहीं होता, डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं। एक्टर को कुछ कहना फिजूल है, और फिजूल नहीं है आपकी फरमाइश। और हम पेश कर रहे हैं एक और फरमाइशी गाना जो कि मदन मोहन जी के संगीत में है, और इसे पसंद किया है शांति ने। 02981622777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में, और ये गाना है बहुत ही प्यारा गाना, और फिल्म है किशोर कुमार जी थे इसमें, और आवाज़ इसमें है देवानंद साहब थे, और लता जी ने आवाज़ दी है इस गाने को, और मदन मोहन जी ने संगीत दिया है जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो पेश है ये बेहतरीन गाना।

25 जून के लॉन्च के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, जो भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं राकेश शर्मा के बाद, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभांशु शुक्ला से बात की और बातचीत में कहा, आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह भारत के गगनयान मिशन का पहला अध्याय है। शुभांशु और चंद्रयान की सफलता के बाद देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई है। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करना और एक्सप्लोर करने के लिए एक नया जज्बा पैदा हुआ है देश में। शुभांशु शुक्ला को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाई आपकी फरमाइशों के लिए, जिसके कारण कार्यक्रम सफल बनता है। और आप सब जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके जुड़ने से, आपके कार्यक्रम सुनने से ही कार्यक्रम सफल होता है। और ख़ासतौर से जो फ़ोन करके अपनी राय बताते हैं और कार्यक्रम के बारे में जो उनकी जो उनकी राय है वो देते हैं, और अक्सर अच्छी ही होती हैं, तो हमें काफ़ी खुशी होती है उससे। लेकिन जो आपके सुझाव हैं वो हमारे लिए आपके खुशी से भी कहीं बढ़कर हैं, तो इसलिए ज़रूर फ़ोन कीजिए और घबराइए नहीं अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सुझाव आप तक लाने की, जैसे कि हम आपकी फरमाइश लाते हैं आपके लिए। और राज की पसंद है फिल्म वो कौन थी का मदन मोहन जी के संगीत में ढाला हुआ, लता जी की बेहतरीन आवाज़ में ये बेहतरीन गाना

बातें कुछ इधर की कुछ उधर की। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई, होपफुली मैंने सही प्रोनाउंस किया, तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले के एक गांव के मंदिर को गांव में रहने वाले एक रिटायर्ड जवान सोल्जर एस विजयन ने अपनी 4 करोड़ की संपत्ति दान कर दी। वो अपनी पत्नी और 2 विवाहित बेटियों के बर्ताव से बहुत दुखी था। तो अपने माता पिता से अच्छा बर्ताव कीजिए। भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की संभावना जताई जा रही है। डील में अमेरिका सभी टैरिफ्स हटा देगा या कम कर देगा, बदले में भारत भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ हटा देगा। साथ ही भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के भी को भी व्यापार के लिए खोल देगा, जो मेरे विचार से भारत के किसानों के लिए लाल झंडी है, डेथ नल है जिसे कहते हैं, क्योंकि भारत में जो किसान हैं वो गरीब हैं, वो अमेरिका की तरह अमीर नहीं है कि उन्हें कॉर्पोरेटाइज किया जाए। खैर, सरकार शायद हमसे ज़्यादा समझदार है, उम्मीद यही रखते हैं हम कि वो सही कदम ही उठाएगी देश के किसानों के प्रति। लेकिन हम आपकी फरमाइश के प्रति बिल्कुल सही कदम ही उठाते हैं। और करण की पसंद है ये फिल्म जहां मौसम का ये गाना, और इसमें आवाज़ है भूपेंद्र सिंह की और मदन मोहन जी का है बेहतरीन संगीत।

बातें हमारी कर्म भूमि की। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में बारबाडोस में हुए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली है और 159 रन से जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 180 और 310 और वेस्ट इंडीज का स्कोर रहा 190 और 141। दूसरा मैच 4 जुलाई से ग्रेनाडा में होगा। और टेनिस प्रेमियों के लिए कल सोमवार से विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप शुरू हो रही है लंदन में और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर के लिए ये चमकने का मौका है। चैनल 10 का पॉपुलर प्रोग्राम द प्रोजेक्ट और एबीसी का पॉपुलर प्रोग्राम Q&A खत्म हो रहे हैं, उनकी जगह क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। पहली जुलाई 2025 से पेरेंटल लीव 22 हफ्तों से बढ़कर 24 हफ्ते हो जाएगी और मिनिमम वेजेस भी $916 से बढ़कर $948 हो जाएंगे। और पहली जुलाई से सोलर बैटरी अगर आप लगाना चाहते हैं तो सरकार आपको $4,000 की मदद देगी और सुपर गारंटी भी पहली जुलाई से बढ़ जाएगी और अब होगी 12% आपकी तनख्वाह की। लेकिन $3 मिलियन से अधिक वाले सुपर फंड्स के लिए कुछ बुरी खबर है क्योंकि उनको उनके सुपर फंड की आमदनी पर 15% टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ महक 2RRR 88.5 FM पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मुफ्त कार्यक्रम है। और अगला फरमाइशी गाना है हकीकत फिल्म का, जिसके गाने सभी बहुत अच्छे थे, हों भी क्यों ना, मदन मोहन जी ने संगीत दिया था और उसके गाने आपको याद ही होंगे, हो के मजबूर उसने मुझे भुलाया होगा, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, और मैं ये सोचकर उसके दर से चला था कि वो रोक लेगी मुझे। और सबसे मशहूर ये देशभक्ति का गाना फिल्म हकीकत से संगीत दिया था मन्ना डे साहब ने, आवाज है रफी साहब की।

कला की दुनिया में जिनके जन्मदिन हैं अगले सप्ताह, उनमें शामिल हैं रजा मुराद, हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं, नानक सिंह जो पंजाबी के बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं, और कल्याण जी वीर जी शाह जो कल्याण जी आनंद जी के ड्यूल, जो दो लोगों की जोड़ी थी, उस जोड़ी के एक थे कल्याण जी। और मशहूर लोगों में पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, हरभजन सिंह क्रिकेटर, और गुलजारी लाल नंदा जो बहुत बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, भारत के कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, और गुरु हरगोबिंद जी जो कि सिखों के छठे गुरु हैं, और अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता। और अगला गाना जो है वो पसंद किया है अशोक ने, और अशोक ने पसंद किया है ये बेहतरीन गाना, फिल्म है मेरा साया। 0298162777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में।

और अगला गाना जो है वो भी एक ऐसा गाना है मदन मोहन जी के संगीत में कि वो दिखाता है कि किस तरह से वो हर तरह का संगीत दे सकते थे।

और मदन मोहन जी ने अपने जीवन में ही अपना यश नहीं बिखेरा, मरने के बाद भी वो अपना यश बिखेरते रहे। और लता जी जो उनकी बहुत बड़ी फैन थी, उन्होंने उनके ऐसे म्यूज़िक को जनता के सामने लाकर दिखाया जो छुपे हुए हीरों की तरह थी। और ये संगीत, ये गीत, ये जो जो म्यूज़िक है, ये था पेश किया गया था फिल्म वीर ज़ारा में। और फिल्म वीर ज़ारा को 50th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, यानी कि मदन मोहन जी को मरने के बाद उनके संगीत के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और इस फिल्म की 30 लाख कॉपीज बिकी सीरीज़ की। और बेस्ट लिरिसिस्ट जावेद अख्तर को अवार्ड दिया गया, सोनू निगम को फिल्म के दो पल गाने के लिए, और उदित नारायण जी के मैं यहाँ हूँ गाने के लिए अवार्ड दिया गया। और इसके सभी गाने अच्छे थे, ये देश है मेरा, दो पल, हम कहाँ, हम यहाँ कहाँ चले आए, और लोहड़ी का गाना कौन भूल सकता है। और महक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक दूसरे का ध्यान रखें। अगले इतवार तक के लिए मुझे सुखदेव जसवाल को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अंतिम गाना फिल्म वीर ज़ारा का ही है, उदित नारायण जी की बेहतरीन आवाज़ में।